0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: ඔබ එක්වන්නේ සුදිල ගුවන්විදුලියේ හින්දි ගීතාවලියක් සමගයි.

बचपन लो मोन पूरा तिल डाला गैनु न कैरा बीला दारु कुल बरवगा कुल चिकिर चिकिर चिकिर लिया कलेत अरल लिंद तगिया लिंद वत कर कबर